0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जहाज से पाजान इनकलाब ईरानी हमले सबब साइप्रस जो जहाज सफर जारी रखने के काबिल न रहो है। ईरान के मुख्य रुनो पे हो तो पंजे रवैये के बेहतर बनाए एहतजारती जहाजन के हमलन का पे मफामत की यादाश एमओयू ते अमल करे पर ईरान एक भेरो बीहर ये करण में नाकाम थो है।

करण सां कडहिं बि ख़त्म न थींदो। दुनिया जा मुख़्तलिफ़ मुल्क जंग जे ख़ात्मे खे तरजीह ॾींदा आहिनि। अमरीका सां असरातियूं ॻाल्हियूं उहो करे सघे थो जेको जंग लाइ बि तयार हुजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सऊदी जे परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान सां फोन ते राब्तो। ख़िते सूरतहाल, अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद यादाश नामे ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि अमरीका ऐं ईरान जे ताज़ी सूरतहाल ते गणती जो इज़हार कंदे छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारिशी कोशिशूं जारी रखण ते तफ़ाक़ कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो मालदीव जे परडे॒ही वज़ीर सां बि फोन ते राब्तो। बतरफ़न लाॻापनि ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई।

0: सागर के देश हिंदू में 2800 एकड़ का सरकारी जमीन पास पर मान के अलर्ट करण खिलाफ हुर्जमाय के समय मानो होरन की रूहानी पेशवा पीर पकार की नोटिस वन बाद हुर्जमाय के चयन खलीफन की अगवाणी में समय मानू देश हिंदू में एतजाज कर अगवाण जो थी हुर्जमाय जो इलाको है ताजे मानू मुल्क की आजादी ला कुर्बान डिन्यू सिंध हुकूमत असल अकदारन के दरपदर कर जमीन बासर मान के अलर्ट क्यों अलर्टमेंट रद्द न कई वही तो एतजाज जो दायरो बढ़ाया वो ऐं गुलशन अदीद में दुकान मां लखे रुपयनि जो धाड़ो सीसीटीवी फुटेज साम्हूं अची विया चयनि हथियार बननि दुकान मालिक पप्पन कुमार खे यरगमार बणाए 60 खां 70 लख रुपयनि जी माल जा मोबाइल फोन रोग रक़म खणी फरार सीसीटीवी फुटेज में ॾिसी सघिजे थो त ॿिनि मोटरसाइकिलनि ते सवार 4 हथियारबंद दुकान में दाख़िल थियनि था हथियारबंद दुकान मालिक यरगमार बणाए लखे रुपयनि जी माल जा मोबाइल फोन रोग रक़म खणी फरार थी विया दुकान मालिक पप्पन कुमार जी फरियाद ते स्टील टाउन थाणे ते केस दाख़िल जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाक राजधानी इस्लामाबाद में तेज हवाओं संगत बरसात खराब मौसम सबब केतरी उडामू मुतासर मौसमियात का चवणा अज इस्लामाबाद पंजाब जहां मथा वारे इलाक बलोचिस्तान केपी में कुछ तेज बरसात जो इम्कान है।

0: बख्शापुर में बीएसपी डर के गुजियल डी का लगल खारो बंद न थियो गोठान जो एहतजाज गोठान जुड़ा तो खारे सब पानी आबादी ना वतन लगो है खारो लगंदे ही अठे तारी कलाक थी वन पंजा तीन खारो बंद न कर वो है नोटिस वी बीएसपी डर के लगल खारो फौरी तौर से बंद कर वे घोड़ाबारी बरसा टैंकर रक्षा के टक्कर में एक जो फोत घोट ओभायो जत में हादसे सबब थी पो लाज जरूरी कार्रवाई ला अस्पताल मुंतकिल कर वो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: इसे जुड़ा है कलंदर लाल जीप नेटवर्क सिंध किया।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदलदा रहो।

तो जी मैं जो सवाल बताने लगी हूँ, सवाल का जवाब देने के साथ साथ आपने मुझे पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है हमेशा की तरह आज भी, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सॉन्ग बताते हैं तो जी मुझे पता चल जाता है कि बल्कि आप लोगों को भी ये पता चल जाता है कि यार आपका जो जवाब था वो बिल्कुल ठीक था अगर मैं आपका सॉन्ग प्ले कर देती हूँ तो आपने यही करना है अपने मेरे सवाल के जवाब के साथ अपना एक पसंदीदा सॉन्ग भी बताना है, लेकिन वो भी 12 बजे से पहले क्योंकि आधे घंटे हमारे पास बहुत इनफ होता है। अगर आप 12 बजे के बाद बताते हैं तो हम लोग सॉन्ग प्ले नहीं कर पाते क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम हो जाता है, फिर आप लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं यार आपने हमारा सॉन्ग प्ले नहीं किया। तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला आज, आपने क्या करना है, आपने मुझे टाइमली जवाब दे देना है मेरे सवाल के जवाब का।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-day ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: साईं, कुछ खबर अथव?
3: छा थियो सोणी?
2: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
3: सोणी, हिन महांग नई बैटरी वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वधीक क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
2: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त
4: सुबुह की चांहि या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

लिख जाता है। तो आपने क्या करना है, आप जाके कमेंट करना है, मेरे पेज को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरी वॉइस को शेयर भी करना है। तो जी आपने क्या करना है, मुझे मेरे सवाल का जवाब बताना। सवाल जिसे मेरा नहीं सुना, मैं आपको सवाल रिपीट करती जाती हूँ। सवाल ये है मेरा कि वो क्या है, जब एक चलता है तो दूसरा रुक जाता है मगर फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं। तो जरा पता लगाएं और मुझे बताएं। जब तक हम यहाँ सुनते हैं एक और सॉन्ग।

0: सखर की आवाज़।
1: खुशखबरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ए मेडिकल जे दुनिया जो वडो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हिते हडन ए जोड़न जो सूर, कुन रग जो सूर, वाई ए चेल जो सूर, वडी उम्र जे माण्हुनि ए नंढन बारन में हडन ए जोड़न जा मसला, फ्रैक्चर, फिरेल पेरन ए जंगुन के ठीक करण, हडन ए जोड़न जे हर किस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनन जरिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन। टाइम आचर खां जुम्मो रोजानो सुबुह जो शिफा बोन ट्रामा क्लिनिक लग नौ देरो चौक लाड़काणो। याद रखंदा डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजन जो मुआइनो कंदा आहिन। एड्रेस सखर टाउनशिप RF बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर। टाइम मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0336684025 ऐं फोन नंबर 07440571999।
2: दुनिया में असांजे मुल्क में शुगर जो मर्ज तेजी सां वधी रहियो आहे।
3: इन जा मुख्य कारण मौरूसी, मोटापो, वर्जिश न करण, गैर मयारी ग़िज़ा जो इस्तेमाल वग़ैरह आहिनि। शुगर जे मर्ज जूं ख़ास ख़ास अलामतूं ही आहिनि: बार बार पेशाब जो अचणु, अचानक वज़न घटि थी वञण, बुख घणी लॻण, मथे ते दॿाउ हुजण, हथनि ऐं पेरनि जो सड़ण, सॼे जिस्म में बाहि वांगुरु महसूस थियण, कमज़ोरी महसूस थियण, पेरनि में फट थियण, टंगुनि में गिढियूं पवण ऐं कंध जो गोरो थियण। वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर नदीम अख़्तर कोराई, MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी।
2: वेहण जो हंध गुलाम अकबर शुगर क्लिनिक साम्हूं म्युनिसिपल स्कूल लाड़काणो।
3: टाइम रोज़ानो मंझंदि जो 3 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं।

0: अचण ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 1 बजे ताईं। याद रखंदा जुमे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि रहंदी।
1: मोबाइल नंबर 03432512177।
2: अदी ॾस त ॾे, मुंहिंजी नुंहुं खे औलादी कोन थी थिए।
3: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसीं, हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे।
0: खुशखबरी, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सुमेरा बिरोही, MBBS, FCPS, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़काणो, माहिर अमराज, नॉर्मल डिलीवरी, सीजर ऑपरेशन, औरतुनि में अंडेदानी, बच्चेदानी, रसोलिन जो इलाज ऐं ऑपरेशन, बेओलादी जो ख़ासि इलाज ऐं टेस्टूं, हमल दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज, औरतुनि में गैर ज़रूरी पाणी ऐं खून जो इलाज। यादि रखंदा, ग़रीब मरीज़नि खे ख़ासि रियायत ॾिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा बिरोही, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर। एड्रेस: सिंध मेडिकल सेंटर, VIP रोड, लाड़काणो।
4: टाइम: रोजानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। आचर: सुबुह जो 11 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं।
0: वधीक मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 03330715533।
5: खुश खबरी, A to Z यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काने ते अवां के हर शे मिले हिक ही छत हेठा। अवां के आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे, मजबूत स्टाइलिश स्कूल बैग या पायदार शूज, A to Z यूनिफॉर्म ते मिले अवां के यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज ऐं बियो स्कूल जे जरूरत वारो सामान बाजार का इंतहाई घट कीमत में। कोई देर छा जी, अॼु ई अचो असां जे खुसूसी ऑफर जो फ़ाइदो हासिल करियो, ताकि अवां जा ॿार रहन स्कूल।
6: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
7: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
6: GA FM नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो उधर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी FM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

जवाब दे देना है सबने। तो जी सवाल मेरे ये कि आपने मुझे बताना है कि वो क्या है, जब एक चलता है तो एक रुक जाता है मगर फिर भी दोनों एक साथ रहते हैं। तो जी आपने पता लगाया और मुझे बताया। इफ्तिखार अहमद, मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपका वेट, और अपने पसंदीदा कोई भी सॉन्ग का नाम जरूर साथ में बताइएगा, क्योंकि अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम आपका शो का जो ये सॉन्ग होगा आपको कमेंट वाला, ये हम जरूर प्ले करेंगे। देन अगर आपका नहीं भी ठीक होगा कोई बात नहीं, हम आपका सॉन्ग वैसे ही प्ले कर देंगे। आप फर्स्ट टाइम हमारे शो में आए हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं। तो जी ऐसे ही इफ्तिखार अहमद यहाँ पर कर रहे हैं हम आपका वेट, और देखते हैं इसके अलावा हमारे साथ और कौन मौजूद।

दिया है, तो आपने मुझे बताना, उसके बाद हमने करना है क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग्स प्ले, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, तो जी टाइमली हर चीज हमें प्ले करनी होती है। तो जी यहाँ पर चलते हैं एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ, जाने पर वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें। ओके, रखिएगा अपना बहुत सारा, रहिएगा मेरे साथ क्योंकि न्यूज़ का पता होना लाजमी है।

0: 88 सखर की आवाज। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: GAFM 88
0: सखर की आवाज। अब आप सुनेंगे
2: Express PM। This time check is brought to you by
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाइयों जारी आन खिते में मौजूद अमरीकी फौजियों ते हमला बाज़रान इंकलाब पारा ओदन के प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तबाह करण की दावा बहरीन कतर की राजधानी में धमाकन की आवाज बुधा गया पासदान इंकलाब दावा कई तो ओमान के तकम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक तेल फराम कद मरकजन के निशानों बढ़ाया हुआ यूएई के दिफाई वाले वजीर जवाद मुल्क जो दिफाई निजाम ईरान तरफाइंदड़ मिजाइल ड्रोन्स जो मुकाबलो कर रहा है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।

0: हड्डी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
0: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

बहुत सारा टाइम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हो गए हैं। तो जी देख लेते हैं पहले कि हमारे साथ मौजूद है इकबाल लशारी, कहते हैं विलेज सोनू खान लशारी मीरपुर से, इज लिसनिंग स्पेशली बाजीसना इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन द स्टेप्स ऑफ ह्यूमन। ओके जी, और अच्छा आपने मुझे कमेंट कर दिया जवाब, लेकिन आपने मुझे एक सॉन्ग नहीं भेजा। अगर आपको पता लगाना हो कि यार आपका जवाब ठीक है या रॉन्ग है, गलत है या सही है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहती हूँ मुझे पसंदीदा सॉन्ग जरूर लाजमी भेजा करें। और अच्छा लगा कि आपने मुझे कमेंट किया है, मुझे ज्वाइन किया इकबाल लशारी, ऐसे आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है हर संडे संडे, और बात करें मेरा आता है जैसा कि आपके और मेरे साथ पूरे दो घंटे के लिए, तो ऐसे आपने हमेशा से मुझे ज्वाइन करते रहना है। और अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे कोई आंसर बता देंगे तो जरूर बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रजा, कहते हैं अर्जना योर वॉइस अर्जना अरिजना, अरे यार मेरा नाम सन्ना है, क्या क्या नाम आप मुझे लेके बता रहे हैं। कहते हैं कि योर वॉइस इज वेरी गुड, आई लिसन टू द शो विद ग्रेट। ओके, कैसे हैं आप? और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कि नूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं नूर हुसैन तोनी फ्रॉम लड़काना, योर शो इज ग्रेट। थैंक यू सो मच नूर हुसैन तोनी, और ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया कि आप बहुत टाइम बाद आप मेरे साथ शो में मौजूद हुए वापस, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा मसूर अहमद हमें कहते हैं सना जी प्लीज लिसनिंग टू द ओएसटी सॉन्ग ऑन योर फेवरेट। ओके जी, लास्ट में अपने पसंदीदा ओएसटी सॉन्ग प्ले करती जाऊंगी जो आप सब सुनेंगे, मेरी तरफ से डेडिकेट होगा मसूर अहमद को, और स्टेप इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके ठीक है, ठीक है जी, जरूर ऐसे ही करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास फरमाइश सॉन्ग था वो भी जरूर प्ले करेंगे, जो हमें शहबाज ने कहा था कि सॉन्ग ये कि जिंदगी देने वाले सुन तेरी दुनिया से जी भर गया। मैंने आपको उस दिन भी ये बात कही थी कि यार ऐसे सेट से सॉन्ग खुद भी ना सुने और हमें भी ना सुनाए, जिंदगी बहुत अच्छी है, ये हमने अपने आप को खुद मजबूर किया हुआ है परेशान रहने पर, तो ऐसा ही। और उसके अलावा देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं कि सगर से कि सन्ना मुझे आपकी वॉइस से प्यार हो गया है, सो नाइस वॉइस, दिल से दिल तक आई मशीन और आई। ओके तो भाई ऐसे कैसे, हाँ ठीक है आवाज से भी हो जाता है, लेकिन मुझे गुस्सा ही बहुत आता है भाई, अगर किसी दिन अगर गुस्सा आ गया तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे कोई प्यार नहीं हुआ ऐसे ही है ना जी। तो और उसके अलावा नहीं नहीं अच्छी अच्छी बात है, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, इसमें कोई बड़ी

तो जी सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग एक फरमाइशी सॉन्ग के, जिंदगी देने वाले तेरी दुनिया से दिल भर गया। तो ये मैंने आपको उस दिन ज्यादा सैड सॉन्ग नहीं सुना करें भाई, और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने खुद अपने जो है ना इस तरीके से खुद मतलब कहते हैं ना जीना आराम क्या हुआ, हमने खुद किया हुआ होता है मतलब ज्यादा उम्मीदें लगाकर ज्यादा शौक पालकर, तो ये चीजें होती हैं। बाकी अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है बहुत खूबसूरत है, तो ये एक ही दफा मिलती है जिंदगी, तो आपने इसको हर रोज एक नई जिंदगी के साथ एक नई खुशी के साथ जीना होता है। तो जी यहाँ पर इसके अलावा और भी हमारे पास फरमाइशी सॉन्ग्स हैं जो कि हम प्ले करेंगे, बल्कि हम प्ले करते हैं अभी।

भी जो हम लोगों को राइट आंसर दे रहे होते हैं, जैसे अजीज सोलंगी ने एक फरमाइश की हमें एक सॉन्ग की फजल सुन लोगे, इस सॉन्ग तो जरूर हम प्ले करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करेंगे क्योंकि जो सैड सॉन्ग होते हैं हम वो थोड़े से ही प्ले कर पाते हैं। तो जी आपने ऐसे सॉन्ग बताने होते हैं जो उधम वाले हों, दिन के हिसाब से हों, आपको रुलाते हुए को हंसा दें, ऐसे सॉन्ग बताया करें, ताकि अब हंसा हुआ बंदा भी ना रोए ना, ऐसे सॉन्ग ना बताया करें। ओके तो करते हैं सॉन्ग प्ले, थोड़ा सा इस सॉन्ग को भी सुन लेते हैं। रहेगा मेरे साथ कर दिया सॉन्ग को मैंने प्ले।

0: सारी बातें होती है जिसमें रोते को हंसाना भी पड़ता है, तो भाई अब ऐसा नहीं ना जो बंदे हंस रहे हैं उनको भी हम अपने ऐसे ऐसे गाने सुना कर रुला दें। तो जी देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है मैं आपको बताती चलूं कि शक्कर के लिए कहते हैं उस्ताद अहमद बख्श विसार विलेज डिंगल खान विसार सितारजा से प्रोग्राम इज वेरी गुड एंड यूर कंपेयरिंग इज वेरी एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट उस्ताद अहमद बख्श विसार। ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना, जैसे आज आपने मुझे ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम आपने मुझे ज्वाइन किया है, मुझे याद रहेगा कि आपने नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास आना है, मौजूद होना है। तो मेरे आपने सवाल नहीं सुना लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मुझे जल्दी से ज्वाइन कर लेना है ताकि आप मेरे सवाल भी सुन सकें, मुझे जवाब भी दे सकें, अपने पसंदीदा सॉन्ग भी सुन सकें। तो जी जो मेरा सवाल था, सवाल मेरा ये था, मैं आपको बताऊं कि मेरा सवाल ये था, आपने बताना था कि वो क्या है जो एक जब एक चलता है तो एक रुक जाता है और फिर भी लेकिन दोनों साथ रहते हैं। तो जी इसका जवाब था वो है कदम, और जिसने भी मुझे ये जवाब दिया है वो उसका आज का मेरा एक और जो है सेगमेंट विन कर चुका है। और इसके अलावा मेरे पास और भी हैं, मेरे कुलीग्स हैं जो मुझे जो है व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं, और उसके अलावा जो आप लोग मुझे फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, और उसके अलावा मुझे एसएमएस करते हैं 8881 पे। तो ये सब सारे लोग मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं, तो आप लोग मुझे टाइमली जवाब दे देते हैं, या कुछ नहीं भी दे पाते जो देर से ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये बात करें, और मुझे जल्दी से टाइमली ज्वाइन किया करें ताकि आपके पसंदीदा सॉन्ग भी प्ले हो सके। तो ऐसे ही है, नेक्स्ट टाइम मैं आपका वेट करूंगी। साद अहमद आप आज मेरे पास मौजूद हैं, नेक्स्ट टाइम भी मैं आपका आई होप कि उम्मीद यही है मेरी कि आप नेक्स्ट टाइम मेरे साथ मौजूद होंगे मेरे शो में। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं शक्कर के लिए कहते हैं हाय बाजी और इमरान अली बरोही लाड़काना से, कैसे हैं आप इमरान अली बरोही। और ऐसे आप मुझे ज्वाइन करते रहना जिससे आज आपने मुझे ज्वाइन किया है, और उसके बाद मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ जो आज मेरे सेगमेंट जीतते हैं। लास्ट में मैं मसूर अहमद की पसंद है कि मैंने उनको करना है, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी करूंगी लामत को। और इसके अलावा आप लोग सबको जो मेरे सेगमेंट विन कर चुके हैं, ऑल टू ऑल मेरे फैमिली मेंबर्स जो आप लोग हैं मेरे, उन सबको ठीक है जी। तो यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ, जाइएगा नहीं रहेगा मेरे साथ, वापस आके करेंगे मजे का एक और सॉन्ग प्ले। और उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग हमारे पास मौजूद हैं जो हमने करने हैं लाइन से पहले, लेकिन उसके लिए आपका होना जरूरी है क्योंकि आपके साथ ही मैं कोई भी सॉन्ग सुन रही होती हूँ, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
1: सचल की सरमस्त धरती,
2: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
1: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

तो यार यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, अभी हम किसका प्ले करें किसका प्ले करें, टाइम देखा तो यार सिर्फ 2-3 मिनट मतलब हमारे पास एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने के लिए रह गए थे, और उसके अलावा हम देखते हैं तो सिर्फ 15 मिनट हमारे पास मौजूद है, 15 मिनट में हमें बहुत सारे सॉन्ग प्ले करने हैं जो कि मैंने अपने राष्ट्र में प्ले करना है, और उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो के प्ले करने हैं हमने। तो क्यों ना मैंने सोचा कि यार आप लोगों से ये पूछा जाए कि अब आप लोगों ने मुझे पहले ये बताने कि आज के आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, क्योंकि अब आपने मुझे ये बताना है कि मेरे शो के बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, या कोई जब मेरे पास आप लोग सुन रहे होते हैं तो इसके अलावा आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स आपके जहन में आ रहे होते हैं, तो आप लोग फिर ये सोचते होंगे ना यार कि हमने ये सॉन्ग क्यों नहीं बताया, वो सॉन्ग क्यों नहीं बताया, तो इसलिए बोलती हूँ आप लोग मुझे टाइमली सॉन्ग बता दिया करें ताकि बाद में डीग्रेड आपको ना हो। तो जी ऐसा ही है, तो आपने क्या करना है अभी, आपने सबसे पहले उठ के मुझे ये बताना है कि आपकी आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, देन मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा सुनने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया वापस छोटी सी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं एक और सॉन्ग प्ले, जब तक आप सोचेंगे वो सॉन्ग कौन सा हो सकता है, और आपका मोस्ट फेवरेट ड्रामा रह चुका है वो उसका सॉन्ग है, इतना मैं आपको बता चुकी

0: हूँ, आप लोग जाए ध्यान लगाए। जब तक यहाँ पर हम लोग चलते हैं एक छोटे से शॉक कमर्शियल ब्रेक की तरफ, रहेगा मेरे साथ।
1: खुशखबरी, आपके
2: हर दिन जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क।
3: चले हवा के संग,
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए तेरे बिन, बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: आवाज
1: DAFM नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: नेटवर्क दे
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: GAFM 88 Network.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

या दिमाग गया नहीं, तो देखा जाए तो ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। निदड़ी कहती है ठीक नहीं थी, ठीक हो गई, अब क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और फहीम कहते हैं टॉपिक मेरे ख्याल से वो अपनी जबान भी भूल जाता है, उसे इशारों से बातें सिखाई जाती हैं। अच्छा, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। और इकबाल आचार्य हमारे साथ विलेज सोनो खान आचार्य मीरपुर खास से सुन रहे हैं, भाई को वेलकम करते हैं। और यासीन कहते हैं लगता है आज आपका मूड सही है जी, बिल्कुल अलहमदुल्ला। और हिदायतुल्लाह कहते हैं डिप्रेशन। और उसके अलावा सरफराज अली कहते हैं हमें जवाब नहीं आ रहा, हमको नहीं पता। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ये तो जब मेरी मेमोरी लॉस होगी तभी पता चलेगा। नहीं, आपने जो इतनी मूवीज इतनी ड्रामे देखे हैं तो बताए ना क्या सीखा हमने। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ ही जी, वालेकुम अस्सलाम, सनाउला बिरोई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हुए आप बताएं आप कैसे हैं। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा शो तो बिल्कुल कीजिए। साथ साथ अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सर आप लोगों को बताते हैं कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना। तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये तो आप जानते हैं। तो बिल्कुल सी, अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है। और उसके अलावा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एज की लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है। तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है, अगर आप नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं, आप लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन आपको फेयरनेस फार्मूला चाहिए, फेयरनेस क्रीम चाहिए, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है जिसे हर एक इंसान लगा सकता है, दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ना, वो उसे तैयार इस तरह से किया गया है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो लगा सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर्स हैं, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां सभी इस्तेमाल करेंगे। घर का एक एक इंसान व्हाइट एज लवली क्रीम को लगा सकता है क्योंकि जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन का फार्मूला है, 30 वाइटमिन कैप्सूल इसके अंदर एड किए गए हैं। और मजे की बात कि इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। ऐसा नहीं कि अब हम ये जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का ये मुझे ही पता है कि भाई मैंने कितनी बार कोशिश करा कि भाई मुझे मेरे टाइप का जो ना स्किन टाइप का सन ब्लॉक मिल जाए, लेकिन कभी मिलता ही नहीं था। और ये जो चीज है हमारे पास, अगर बनी बनाई चीज एक मिल जाए हमें जिससे बस हमने सिर्फ फायदा उठाना है, तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है जिसके अंदर आपको सनब्लॉक की क्वालिटीज भी मिल रही हैं, क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और आप इस्तेमाल करेंगे इसे किस तरह, जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, सुबह लगाएं जब आप किसी काम से जाएं, कोई काम है या आपका कोई जॉब करते हैं, तो आपने बस अपना फेस वॉश करना है और व्हाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक नहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स की स्किन पे जो है ना काफी ज्यादा एक्नीज आ जाते हैं, तो एक्नीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि इसे जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये आके एक्नीज को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात है वो खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा निशानात हैं या फिर जैसे आंखों के हल्के हैं या फिर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के कोई भी निशानात अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्हें जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। लगाने के तरीकेकार भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं। और हाँ, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना इसे आप दिन में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि आप सुबह में भी लगाइए और रात में भी लगाइए। जब आप सुबह उठें तो आप लगा लीजिए और जब आप सोने लगें तब भी आप लगा लीजिए, लेकिन लगाने से पहले अपना जो ना फेस वॉश लाजमी किया करें। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन ढूंढ रहे हैं, तलाश अच्छे से साबुन की, तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है। और व्हाइट एज ब्यूटी सोप जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जिसके अंदर एवका जो है, एलोवेरा है और मिल्क है। उसके अलावा अगर आप चलें सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, तो आपके पास व्हाइट एज का जो है ना फेस वॉश भी मौजूद है।
اوکے جی, تو وائٹ ایج کا فیس واش بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا ہے, جو کہ آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے, اینٹی ایجنگ کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن ای بھی موجود ہے. اور مزے کی بات بتاؤں تو جناب, وائٹامن سی والا جو یہ وائٹ ایج کا

फेस वॉश ही ना, ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे लगाएंगे तो आप कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज का फेस वॉश या फिर सोप, जो भी आपको इजी लगता है, जो भी चीज आप लगाना पसंद करते हैं, बस लगाते जाइए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और हमेशा के लिए टिप टॉप बनी रहिए। और साथ साथ डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बुड़ी 1300-1579-5595 ही नंबर आए जो तव्हांजी आसानी जे लाइ आहे। अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराइण चाहियो था त देन तव्हांखे ही नंबर डायल करणो पवंदो ऐं नंबर डायल करण खां पोइ तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा। सो अवेलेबल करायो ऐं पंहिंजे लाइ आसानी पैदा कयो, समझो था, पंहिंजे लाइ बि, पंहिंजे आस पास जे माण्हुनि जे लाइ बि। ओके, सो वाइट एज जूं एतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी, वधीक तव्हांखे ॿुधाईंदा बि रहंदासीं। और विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्राम हिंगूजा से दिलावर हुसैन सोलंगी है, बाजी सिद्राब कैसी है और शेला गुल का गाना सुनाइएगा और कहते हैं 8 दिन हो चुके हैं आज मुझे मुझ पर नहीं, आज लास्ट टाइम आपका गाना मैंने चलाया था कुछ शायद 1-2 दिन हुए और चले मैं कोशिश करूंगी आज जो आपने गाने की फरमाइश करी लगाएंगे। डेडिकेशन आपकी जा रही है किसको, नजीर सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड तैयब सोलंगी के नाम चले रही, बहुत शुक्रिया हो गया आपका। और फहद डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह, सलाम अदी शो नाइस आई तमाम जो मोहब्बतों प्यारे भाजी। और हमारे साथ है जी प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, कहते सलाम पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज दीबा सहर का कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का प्ले कीजिएगा। ओके डन। और हमारे साथ है जी ये दादू खान हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हाजिर हाजिर हलायूं।

अच्छा अच्छा था जो अदा जी वापस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान तो हुई पर मां कुछ गालाई थी कोना हुए मतलब मुझे एतरो एटीट्यूड हो मां बिन सालन ताई किसा गालो ही कोना हुए महाणी भी घट गालाई नहीं पर बिन सालन ताई किसा गालो ही कोना हुए सो त लई छोकरी जी अच्छा मिठो सुमरो हमारे साथ है मिस्त्री ओके जी फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लशपश है और एंजॉय कर रही है आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो एंड फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूंगी और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं ओके जी महामान जमान लगते हैं टॉप

हुई त डोवा त हू गरीब गरीब जे लाइ नाहे ठहियो नो जी प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरतियां हासिल करते जाइए। एम अंसारी लिखते हैं कि लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो फितरतन मिली हुई है और फितरत इंसान में ऊपर से डाउनलोड होती है। अच्छा मनैया गल हुई सही अनेक बिड़ोई भाई हमें सुन रहे हैं सक्रीन से खुश आमदी भाईजान। फहीम कहते हैं सावट ऑलरेडी अवेलेबल आए।

तो क्रीज जाई बुधा तो कड़ो प्रोडक्ट बतो थव हाउ हाउ मुखे याद आने न्यूज ब्रेक जो टाइम थियो ना कपे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए तमा गाड़ी ना वंजो एदे बैठा हो जो मा ओ ही मनी ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हनो था कोन बुदायो तो सही खबर तो पवे सोना थे आयो या कोन

सिक्योरिटी फोर्सेस जे ताज़न कार्रवाइनि में वधीक टे खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। अंग वधीक 105 थी वियो। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान ऐं पुलिस जो गॾियल ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी सरनि जो चवण आहे त ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग वधी 67 थी वियो आहे। 5 जुलाई खां जारी शाबान ऑपरेशन ऐं ॿियनि ऑपरेशन में 105 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहंदो।

0: कादरपुर में गरम तेल उछलाए जख्मी गर्ल निगरी सानिया भुट्टो की हालत खराब, निगरी कोट के अस्पताल।
1: Change is inevitable.
2: Claim the X factor. It's time to make your next move. Pakistan's first ever XUV Suzuki Fronx.
0: गंबर के अस्पताल मुंतकल कह वने। शिदादकोट के मुख्तलिफ पाड़ा में पानी न पहुंचने के खिलाफ एसयूपी कारकुनन जो एहतजाज, अगवान जो त्रिजब मोहल्ला यार मोहम्मद बिरोही गोट मसण मोहल्ला कालू मकान खारानी मोहल्ला समेत बेन मोहल्लन में वाटर सप्लाई जो पानी बिन महीनों का बंद है। शहरी अजाब भोगन पाया, केतरा ही भेरा म्यूनसिपल चेयरमैन की लिखत में शिकायतों क्यों पर पानी ना मिलो, हुकूमत शहरन के पानी फराहमी लाए कदम खड़े।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो उधंदा रहो।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

मैं करती हूँ आप लोगों को बता स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में देती हूँ, क्योंकि पहले आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के आप जी स्किन ब्यूटी को कैसे बढ़ा जी, पहली बात तो ये है कि जो है ये डॉक्टर्स की निगरानी के प्रोडक्ट, स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, हम नॉर्मल से प्रोडक्ट नहीं लगा। जी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर स्किन ब्यूटी क्रीम स्किन के मुताबिक है, सेंसिटिव है और इसके अंदर वाइटम पाकिस्तान में दो वाइटामिन ई बी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आती है हम क्वालिटी का ये प्रोडक्ट जो कि वाकई है और बहुत मस्त है, जनाल करेंगे ताकि आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे अगर जो है वो रिजल्ट देना स्टार्ट आप दो वाले हैं तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों वाले रिजल्ट देना। स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरत के लिए तैयार की गई देती है, इसका बाउंड की ही वो कम कर देता बन जाता है। तो आप भी जी स्किन ब्यूटी क्रीम की शानदार है, बहुत ही बेस्ट है, तो आप जी लगाइएगा। और फेस वॉश का फेस वॉश जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और उसके अलावा हाइड्रेट भी।

0: ओके जी, तो डे स्किन का फेस वॉश अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे जी। ऐसा फील होगा कि आप कोई बहुत ही महंगा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है। तो लास्ट ट्राई करके देखिए, और इसी के साथ साथ आपका जो कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो जरा हम स्टार्ट करते हैं। कॉलिंग सेगमेंट में आप लोग हमें जो है ना वो ज्वाइन करते जाएंगे, और उसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स भी करेंगे। और इसके अलावा आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332132288। सो फर्स्ट कॉलर की जाने बातें देखें कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रसन सगड़ा
1: अलीजा।
0: अलीजा माशाल्लाह पहली कॉल है जो अलीजा जी लगी भैया, सो लकी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुठी गाल आज, मतलब शुरुआती छोकरी जी कॉल सा थी, या मतलब लगे तो इलाही छोकरी जो कॉल ही वेंदी ई। ओके अलीजा, बुधायो छाला ताने खुश आयो।
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मां की कया तो आ बुधायो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया। प्रोग्राम बुधो पिया।
1: जी जी रोजाना बुधना आयो।
0: टॉपिक ते अलीजा छा चवंदी?
1: टॉपिक ते कुछ नहीं चवामा।
0: चो भला
1: खबर ना दिमाग में कौन घुसी है गल।
0: चलो मुखे ये बुधायो तो तमा केड़ो प्रोडक्ट लगायो पया? अजा कौन लगा अवेलेबल थे या तुम वठन कौन वाया आयो?
1: अवेलेबल थी वे हुंदा उनका पा वही न छो त गर्मी ज्यादा
0: है। चलो चलो ठीक है, बियो बुधायो बियो छा चवंदा?
1: जे जो के भी छोकरी बुदन पे उनन के सलाम नेदा बुदेती मुसा गड शो।
0: जी जी
1: गानो बुधरा जो।
0: केडू
1: करन बुदा केडो बुधरा गानो
0: निदा के सुवाई बुधाए गानो केड़ो बुधंदी?
1: निदा भजी होई गाने आ
0: शर्मीली या कुछ ज्यादा ही ना
1: कोई भी सुना।
0: चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच अलीजा, तुम प्रोग्राम में कॉल कई इलाही सुठो लगन अलीजा संगाल आए। ओके सो तुम भी कॉल करी सको था, कॉलिंग नंबर आए 0332132288। नेक्स्ट कॉल है, दिसो केरा ससगर मौजूद आए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाजी।
0: केड़ो भाषा से गडा?
2: अयाज अली
0: भुट्टो। किथा कॉल कया?
2: लाड़कानी
0: खां। अयाज भा खुश आयो?
2: हेलो ब्रदर, आता कुछ लगा था
0: केरा? मजे में प्रोग्राम बदो पे आयाज भा।
2: हां तेरा घर था ये ब्यूटी क्रीम।
0: हां केड़ी ब्यूटी क्रीम ता लगायो?
2: रोज बदलना हो बाजी चौका रा।
0: वाह वाह वाह वाह, केड़ी क्रीम हणी दिठी तव?
2: डीएस ब्यूटी क्रीम बाजी।
0: डीएस? ओके ओके, डीएस ना वैसे डी स्किन नालो तस। ये न तो दुकान में वो मानो के जो डी स्किन जो तो
2: डॉक्टर
0: माई जो फोटो अस न जी जी
2: गाना तो बुधा
0: जी जी बिल्कुल बुधाए था कड़े दोस्त की याद कदा
2: मोहम्मद हसन भुट्टो। अच्छा भुट्टो सिद्दीक मांगी।
0: जी जी
2: ओके
0: थैंक यू सो मच अयाज भा, तांचो मोहब्बतूं तां प्रोग्राम में कॉल कई। ओके जी कॉलिंग नंबर 0332132288। आप सुन रहे

0: जी व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम बाजी सिद्धराज, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, के रस से गड्डा
1: बाजी सिद्धराज आज सब अंदर हाथ से सामल अहमद ढिलो मोरो खान.
0: वाह वाह वाह वाह, मोरो वाला लिसनर माशाल्लाह इला एक्टिव आए ने ये ना.
1: जी जी बाजी सिद्धराज आज रोज प्रोग्राम बदायो ता आज प्रोग्राम ना तो भालो हालत वा है
0: नालो तो बदायो मुझे प्रोग्राम जो जेको डेली बदन आयो
1: वाइट एच
0: तां साबित करे छॾियो तव्हां मुंहिंजा वाकई रेग्यूलर लिसनर आहियो. तव्हां डेली प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो. अॼु जो प्रोग्राम ॿुधो था त सवाल ते तव्हांजो चलो ममताज़ मलाई हलाईंदासीं तव्हांजे लाइ.
1: कलाम ॿुधो हलाइजो, इहो इंतज़ार
0: ठीकु आहे. ठीकु आहे ठीकु आहे, थैंक यू सो मच प्यारा भाउ प्रोग्राम में कॉल कई. तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां शौक़ सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. अच्छा, मूं छंछर ते कॉल न वरिती हुई, न शायदि छंछर ते न वरिती, खमस ते बि न वरिती हुई. सो अॼु त वठणी हुई न, मूंखे कुटकी थोरे खाइणी सम्झो था नी. सो मतिलब ईअं आहे त कॉलियूं लाज़मी वठणी हूंदियूं आहिनि. सो कॉलिंग नंबर आहे 0332132128. नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था केरु असां सां कॉलर मौजूद आहे. हैलो, वालेकुम असलाम दुआ. हाणे ॾिसो मां दुआ खे सुञाणे वञां थी, ईअं न? दुआ छाला ख़ुशि आहियो? अलहमदिल्ला, तबियत में भला मज़ो न आहे छा? अॼु सफ़ा एनर्जी डाउन लॻी पई अथई. हा ॾिस, मां सम्झी वियसि. अच्छा दुआ ॿुधायो, प्रोग्राम ॿुधो पिया?
2: हा बिल्कुलु.
0: अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी? ईअं छो? अलाह, इहो त ग़लति आहे न? चलो इहो ॿुधायो त तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो
2: आहे?
0: वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम हणो पिया, रिज़ल्ट मिलियो आहे दुआ खे?
2: चलो
0: चलो, माण्हुनि खे छा चवंदा? हणो बाबा हणो, वाइट एश ब्यूटी क्रीम हणो, ईअं न? चलो ॿियो छा चवंदी दुआ? अॼु दुश्मन खे सलाम न ॾींदी छा? तबियत डाउन आहे न लाइ दुश्मन ओके ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू दुआ जी. सही आहे पोइ त. चलो दुआ जे दुश्मन खे बि असां वेलकम चऊं था, ईअं न? ओके, थैंक यू सो मच दुआ, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई. ऐं तव्हांजी तबियत ठीक थी वेंदी जल्दी, ठीकु आहे? मौसम जो बि थोरो इशू थी सघे थो, तव्हां बर्फ़ घणी खाधी हूंदी लॻे. अछा कुझु ईअं बि थींदो आहे असांखे जेको आहे न, कॾहिं कॾहिं थोरी पंहिंजी तबियत बि सम्झ में न ईंदी आहे त इहो थी छा वियो आहे. ओके सो तव्हां बि, हा बिल्कुलु, तव्हांजे कॉल्स अचनि थियूं और कॉलिंग नंबर आहे 0332132128. जल्दी जल्दी कॉल कयो. अच्छा मैं ज़रा खो गई थी आगे कॉमेंट्स की जानब. ओके सो ये कॉल हम देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है. हेलो जी, हेलो. इतना भाई सन्नाटा क्यों है? ओके सो नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है. हेलो जी,
3: सलाम अलैकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.

0: अच्छा इहो बि ठीकु आहे, असां अॻिते हली सिस्टम कंदासीं त तव्हां पंहिंजा फोटोज़ बि असांखे मोकिले सघो था।
1: असां बिल्कुलु कंदासीं, अपलोड कंदासीं।
0: चलो तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ए मंसारी?
1: इहो फ़िलहालु मां न ॿुधाईंदुमि, मां रिज़ल्ट ॾिसां किथे।
0: चलो चलो ज़बरदस्त आहे। तव्हांजो फुल फॉर्म छा आहे ए मंसारी जो?
1: अली मुर्तज़ा।
0: अली मुर्तज़ा, तव्हांजो नालो इलाही ख़ूबसूरत आहे माशाल्लाह।
1: थैंक यू।
0: ओके सो ॿियो छा चवंदा?
1: ॿियो कुझु कोन चवंदुसि, तव्हां मुंहिंजो जेको आहे न साउंड कल खाई आहे, बसि उहो प्ले कयो।
0: कहिड़ो गानो ॿुधाए छॾियो हिते हलायूं था?
1: आतिफ असलम, तेरे बिन में ही कैसे जिया।
0: चलो ठीक आहे, ॿियो कंहिंखे सलाम ॾींदा या बसि टाटा गुड बाए?
1: सलाम सलाम जेको आहे न सभिनी मुनाफ़िकनि खे।
0: अई ली तव्हां बि दुआ वारी कार कई
1: आहे।
0: चलो ठीकु आहे अली मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया तव्हां कॉल कई माशाल्लाह, ऐं तव्हांजी कॉल लॻी बि वई, इहो इनखे लक चइबो अथव। ओके सो नेक्स्ट कॉल वठूं था, कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। हैलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अई ली ॾिस ॾिस ॾिस दरअसल कॉलियूं डेली वठूं था त हाणे थोरो थोरो माण्हुनि खे सुञाणी वई आहियां, सो मां सुञाणो अथई कंहिंजी कॉल आई पर भॼी वई। चलो ठीकु आहे, ओके सो हिते टाइम बि थी वियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, उनखां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजे मोटींदासीं। तव्हां काॾे न वञो, इते वेठा हुजो, मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटावां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हणो ऐं सोणा थियो।
2: FM 88 Network, Sindh ki Awaaz.
3: Muro,
2: Naushahro,
3: Mirpur Khas,
2: Larkana,
3: Sakhar,
2: Goonj Rahi Hai Har Jagah Par,
3: Sindh ki Awaaz.
2: GA FM 88 Network. Cha tawaan jo khwaab aaye ta mustaq.
4: Haq sach jo awaaz, geet sangeet jo awaaz. GA Hyderabad Matiyari FM 91.6. सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है।

0: Crino. हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

ओके जी, सो किशोर भाई कहते हैं कि जब हम 2-3 साल के होते हैं तब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी जुबान क्या है, हम सिंधी हैं या उर्दू स्पीकिंग है, अगली भी गई। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गई जो आप कहना चाहते हैं। इसे दरअसल शेडोविंग कहते हैं, जो हम सुनते हैं और वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि उसको जो है ना वो मसल मेमोरी जो है ना वो फिट कर देती है। तो सही बात है।

इसका थोड़ा सा टेक्निकल जवाब हो सकता है, लेकिन अगर हम फन में लें तो सही है, समझ गए होंगे। हैं जी फरहान अली मीरानी, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और फहीम कहते हैं हमने व्हाइट एश लवली क्रीम ले ली, अच्छा, और एक फेस वॉश सर खाली जूने जो को भेजा है, चलें जी जबरदस्त हो गया। और उनका अलावा हैं जी मूसा एम के कोरी कहते हैं सलाम जी, वालेकुम असलाम, आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच राम कंबर। ओके जी, सो आपको भी वेलकम करते हैं, आमिर अली आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई हैं, कहते विलेज खान मोहम्मद बिरोही से प्लीज प्ले सॉन्ग बिरोही। ओके आई विल ट्राई। शफकत अली खान हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं।

दीदी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रही हूँ। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि तव्हांजे प्रोग्राम में अचण जी आदत जो आहे आसिर वञे या आदत वञे वञे नन्ना बाबा, ॿई चीज़ूं हुजनि सलामत और लियाकत।

वञे या आदत वञे वञे न बाबा बई चीजू हुजन सलामत और लियाकत बात है कोई नहीं कोई नहीं।

ने क्या भी सुना, एक और भी सुनेंगे और साथ साथ हैं हमारे साथ. गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस. दिस इज अल्ताफ अली गादी पलोच प्रॉम करे आपको वेलकम करे. वालेकुम सब तो करे छे पर आयो नेट पर आयो थी दो आई लीड़े कहते हैं डेडिकेट. अच्छा चले टाइम बस गया तो लगाते, नहीं तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे. और नदीम अली शेख है, मुंतजर मुतहिर शेख फ्रॉम विलेज भीरू. आप ही सिदरा? अच्छा अहमद मुगल के गाने की आपने फरमाइश कर दी है, कहते हैं हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. हुसैन राहेजो है, नवाब शाह सिदरा बाजी आप कैसी हैं? शो तो आपको बाजी बलोची गाना प्ले कर जो डेडिकेट सदाम राहेजो सजाद राहेजो एंड आपको बहुत शुक्रिया जी. और मेरे पर खास अब्दुल्ला बहर ने कहते वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, अब्दुल्ला महर भी कहते हैं कि मैं व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, तो बिल्कुल जी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाते रहिए और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करें. अच्छा वैसे जो हम कॉल्स लेते हैं ना, तो कुछ भाई लोग कॉल पर आते हैं जो कहते हैं कि भाई डी एस क्रीम, अब ये है कि इसका नाम डी एस नहीं है. जब आप दुकान पर जाते हैं ना, आप लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट का नाम नहीं होता ना पता, तो दुकानदार समझता है कि इसको उल्लू बनाना तो बहुत आसान है, तो वो आपको उल्लू बना देता है. ऐसा मत किया करें, आपको प्रोडक्ट का नाम सही से पता होना चाहिए. डी एस नहीं है, डी स्किन है. और वो कहते हैं ना नकालों से होशियार रहे बिल्कुल वैसे ही, अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करें, ठीक है? नाम आपको आना चाहिए.

पता नहीं चला क्या इश्क है इश्क है ये तो सुन लिया। अच्छा जी, और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे सारे खुश आमदीद कहते हैं जी आपको भी, और उनका अलावा ए मंसारी कहते हैं नोट प्रिपेयर फॉर कॉलिंग, लग गई कैसे मैं इस शौक में शॉक्ड हूँ। ऐसे ही होता है, अच्छी चीजें जिंदगी में से सडनली आ जाती है, फिर इंसान जो है ना वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया। लेकिन अब आप ऐसे ही कोशिश करते नहीं, आपकी कॉल लगती रहेगी।

0: इतनी बुरी मौत अल्लाह बचाए. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट एज के लगा रहे हैं या फिर डी स्किन के लगा रहे हैं. और साथ साथ अनवर भाई कहते हैं कि चांद से तो नहीं अलबत्ता सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में आपके चेहरे का नूर चुरा लेगा. बिल्कुल जी, ये हकीकत बात करी अनवर भाई ने, तो जरूर पर्दा कीजिए. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं.
1: जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी न सके, हम के जो थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रहते भी जलाती है जुदाई ऐसे जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जा...

अच्छा चाचा खालिद, आपने टॉपिक के ऊपर जवाब दिया है, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं मैंने AI यूज नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए। और दर्द दिल कहती है कि कहाँ से लाती हो ऐसा टॉपिक चंदा, दिमाग का दही बना दिया तुमने, सच बताओ। और उसका सही है, थैंक यू। एमन सारी कहते हैं बेनजीर हिरास सनोबर भी चुपके से यू को सुन रही हैं। बेनजीर हिरा और सनोबर सबको वेलकम कहते हैं। ओ ये तो घुन्ना लिसनर है।

ओके जनाब, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं ये भी बता दिया करें। नजरी कहती है यस मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं नहीं कर सकती, क्या तुम कर सकती हो? बिल्कुल जी।

0: अच्छा बिलाल, लगते हैं कि कुछ लोग और कुछ चीजें हमारी नहीं होती, हम सिर्फ कुछ अरसा उनके साथ चल रहे होते हैं, फिर एक दिन जिंदगी आकर कहती है अब वापस करो, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा आमिर अली को हमारा शो पसंद आ गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जी भक्त अली सियाल हमारे साथ है, कहते नाइस योर शो, थैंक यू। अच्छा मोहम्मद सलमान कहते ओके बाबा ओके डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हाँ जी नाम सही लिया करें, वरना दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट थमा देगा जो सूटेबल नहीं होगा, एक्सेप्ट। अगर ऐसा सीन हो गया ना कि दुकानदार आपको कोई और प्रोडक्ट दे दे, तो फिर आप समझ जाएं कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना, यानी कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले रहे हैं तो उसके ऊपर डॉक्टर माई जो फोटो था, डॉक्टर माई जो फोटो हुए तब वो ना हो ना वो, समझो था। और यमीन केरियो है, यामीन केरियो है सऊदी अरबिया से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम कहते हैं जब मेरी कॉल लगेगी मुझे डर ही, आप मुझे कंफ्यूज ना करते, नहीं मैं तो अगले इंसान को काम रखने की कोशिश करती हूँ। और नजीर लाया हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अच्छा सुन तो लेना पहले, सुन तो ले। हाँ जी, तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि हम अब जाने लगे हैं। ओके जी, सो वरी इंशाल्लाह तमासा मुलाकात मुझी थींदी 5 बजे वाले प्रोग्राम में। वाले प्रोग्राम जाऊंगी कि आप सब लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लाजमी ट्राई करके देखें, अगर आपको मजा ना आए तो बताइएगा, क्योंकि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही ज्यादा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए। और जी नोरी भी हमारा शो सुन रही है, क्या बात है, नोरी को तो मैं भूल ही गई थी। ओके सो वरी 5 बजे वाली प्रोग्राम में मिलूं था, 5 ओ सरो ख्याल रखना कि एक गलती थी, मुझे तो माजरत कहूं था, जिंजा गाना रेजी बयान, मैसेजेस रेजी बयान, कुछ भी रेजी बयान, तो नाला माजरत कहूं था। सो मुकलानी ना ही बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज।
1: It's 3 PM. This time check is brought to you by
2: Fakiri Neem Prickly Heat Stop.
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट स्टॉप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
1: ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो जवाबी कार्रवाई जारी, खिते में मौजूद अमरीकी फौजन ते हमला। पासदान इनकलाब पारा उर्दन के प्रिंस हासन एयरबेस ते वे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करण की दावा। बहरीन कतच राजधानी में भी धमाकन जो आवाज बुधा वा। पासदान इनकलाब दावा कई तो ओमान के दकम बंदरगाह ते अमरीकी लॉजिस्टिक ए तेल फराहम कदड़ मरकजन के निशानो बनाया है। यूएई के दिफा वाले वजीर चयो तो मुल्क जो दिफाई निजाम ईरान तरफा ईंदड़ मिजाइल्स एंड ड्रोन्स जो मुकाबलो कर रहा है।

ईरान ऐं अमरीका चिकटाण घटाइण सब्र जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरानी पंहिंजे वज़ीर अब्बास इराक़ची विच सां फोन राब्तो। ॿिन्ही अॻवान पारां विच ओभर जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। इसहाक डार चयो त ख़िते में अमन इस्तक़ाम लाइ सफ़ारतकारी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही पंहिंजे वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जी इतफ़ाक़।

ईरान खे पंहिंजे फैसले जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते एक्स ते बयान में चयो आहे त ईरान ग़लति फ़ैसिलो कयो, हाणे खेसि क़ीमत अदा करणी पवंदी। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर

शेर चाहे हो तो वायदो पूरा कयो इन की कीमत अदा कयो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाब चाहे एक तरफी वायदन जो दौर खत्म थी चुको है पैदा कल वायदा पूरा कयो या वायदन की भंजकड़ी की कीमत अदा कयो वफाकी हुकूमत में तब्दीली ए नवन चेहरन की आमद जो इम्कान जरियन मूजिब वजीर आजम शहबाज शरीफ काबीना में तब्दीली बाबत मुशावरत मुकम्मल कर छी है नवन शामिल थींदड़ मेंबर सवाल उथारिया वजीर तमीन कंदड़ बात न थियण सबब गणती जो इज़हार कयो आहे चावर बटालू फ्रूट की एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो भी इज़हार कयो वफाकी राजधानी इस्लामाबाद में तेज हवाओं से गड बरसात खराब मौसम सबब केतरी उडामू मुतासर मौसमियातकार जो चवण है अज भी इस्लामाबाद पंजाब जहा मथियन वाले इलाक बलूचिस्तान केपी में कुछ हंधन तेज बरसात जो इम्कान है।

खैरपुर में पीपल्स पार्टी पारा मरसू मरसू सिंधु नाडेसू जो उनवान हेठ रैली अगवण जो सिंधु दरिया सिंध जी सुप ज़रात ए मैशियत है। सिंध तास मुहिदे से दरिया के पानी बाबत थियल आलमी मुहिदे जो एतराम किया वे। भारत मुहिदे की भनकड़ी करण या सिंधु के पानी से धार वहन की कोशिश कई तो पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम कें माफ न कंदो। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत में सिंध के पानी सिंधु दरिया ए अवाम के आयनी हकन के तहफुज लाए जदोजहद जारी रही। सखर में मर जतो ही खूनी तकरार जल गया जी फतवा अज बुधाई वेंदी। सर्किट हाउस में सखर में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम। पुलिस की वही नफरी मुकरर। बिन्हीं धुरन जहां मानू चंगा मुड़ सर्किट हाउस पहुंचन शुरू थी व्या। अलीगौर खान बहर इब्राहिम खान जतो ही जगवाणी में फतवा बुधाई वेंदी। टेन मकतूलन बाबत एतराज सबब मुलतवी थियल फतवा अज जाय थे जो इम्कान। मर जतो ही तकरार में हेल तई पंजवंजाह इंसानी जानू जाया थी चुकियूं।

जंहिंजे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में अॼु ऐं सुभाणे किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात जो इम्कान। मौसमियात खाते मौजूदु सिंध जे कुझु इलाक़नि में मिटी जे तूफ़ान जी बि अॻकथी करे छॾी। दादू ऐं कंबर शिदादपुर ज़िलनि में अॼु कुझु हंधनि ते हल्की वसकार जो इम्कान। मिटी जो तूफ़ान बि थी सघे थो। सुभाणे शिकारपुर, कश्मोर, सकर, शहीदगंजराबाद, घोटकी ऐं सुरपुर में बरसात जो इम्कान। सामूरी पटी वारनि इलाक़नि में हल्की बरसात थी सघे थी। कराची में ईंदड़ टिनि ॾींहनि दौरान मौसम झुड़ाली ऐं खिमियल रहंदी। सकरन ऐं मेहड़ में प्रिया कुमारी ऐं उजाला परवीन सोलंकी जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। मेहड़ में उजाला परवीन जे वारसनि चयो त 99 ॾींहं गुज़रण बावजूद पुलिस बाड़ी बाज़ियाब न कराए सघी। सकरन में एसयूपी अॻवाननि पारां प्रिया ऐं उजाला जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी कैम्प 3 ॾींहं बि जारी। अॻवाननि जो जवाबदार बाज़ हुजण सां बि पुलिस कार्रवाई नथी करे बाड़ियूं बाज़ियाब करायूं वञनि।

वानसदाबाद में कणक ज़खीरो करण खिलाफ बेड़ी पर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर की अगवाणी में जोही रोड से कायम गोदाम से छापो। कणक जो 6,000 बोरियो हथ कणक सरकारी गोदाम से मुंतकिल करण दौरान व्यापार जिले इंतजामिया के अमलदार विच में चक्रियों।

कादरपुर में गरम तेल उछलाए जख्मी की नींगरी सानिया भुट्टो की हालत खराब। नींगरी गोट के अस्पताल में इलाज हेठ वायरस माली मुश्किलातन जो शिकार। मुतासर खानदान जो सरकारी खर्च नींगरी बेहतर इलाज कराने जो मुतालबो। आईजीसीएन के नोटिस बावजूद मुख्य जवाबदार लुत्फ भुट्टो अजा तक गिरफ्तार न थी सको। वारसन चौणा तो नींगरी के बेहतर इलाज ला फौरी तौर से गंबड़ के अस्पताल मुंतकिल किया वे। शहदादकोट के मुख्तलिफ पाड़न में पानी न पहुंचने खिलाफ एसयूपी कारकुनन जो एहतजाज। अगवाण जो तब्रिक मोहल्ला यार मोहम्मद बिरोही गोट मसरण मोहल्ला कालू मकान खारानी मोहल्ला समेत बेन मोहल्लन में वाटर सप्लाई जो पानी बिन महीनों का बंद है। शहरी अजाब भोगन पाया। केतरा ही भेरा म्यूनसिपल चेयरमैन के लिखित में शिकायतों क्यों व्यू पर पानी न मिलो। हुकूमत शहर के पानी फराहमी लाए कदम खड़े।

0: आप सुन रहे थे एमनेट न्यूज़।
1: सच जो आवाज, गीत जो आवाज, मटियार सिंध जो आवाज, उदंदर
2: जिस घर पास

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: उधर सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: अरे उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारिम को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, वो लड़की उसको नहीं मिलेगी, खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इस्तेमाल किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर तमाशा बन गई मामा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी।

0: FM 91.6 सुनते जो आवाज बदलता रहो बदलता रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: که مکرینو.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जी एफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सट्टान डायस्टा पर जो मुजाहिर होकर नायब वजीर आजम शाह डाजी रानी पटेई वजीर अब्बास राखी विच में फोन ते राबतो बिन्हीं अगवाणन पारा विच ओवर जी सूरत ते गाल्ह बोल साग दार चयो त खते में अमन इस्तेकाम लाइ सिफारतकारी वाहिद रस्तो आहे बिन्हीं परडेई वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। ईरान के पैंजे फैसले की कीमत अदा करनी पवंदी अमरीकी दिफा वारे वजीर पेट हेक्सेथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ते चयो आहे त ईरान गलत फैसलो कयो हाणे खेसि कीमत अदा करनी पवंदी। अमरीकी दिफा वारे वजीर सेंट काम जो पैगाम भी शेयर कयो। चयो तो वायदो पूरो कयो या वायदे की पजगड़ी की कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ चयो आहे त एक तरफी वायदन जो दौर खत्म थी चुको आहे। पंहिंजा कयल वायदा पूरा कयो या वायदन की पजगड़ी की कीमत अदा कयो हकीकत तव्हां जे साम्हूं आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत में तब्दीली ऐं नवनि चेहरनि जी आमद जो इम्कान ज़रियल मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ काबीना में तब्दीली बाबति मुशावरत मुकमल करे छॾी आहे। नवनि शामिल थींदड़ मेम्बरनि खे मुमलकती वज़ीर जा उहिदा ॾियण जो इम्कान आहे। वज़ीर आज़म वफ़ाक़ी वज़ारतनि जी कारकर्दगीअ ते सवाल उथारिया आहिनि। वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट में मुतमिन कंदड़ वाद न थियण सबब बि गणतीअ जो इज़हार कयो आहे। चांवर बटालू ऐं फोर्ट्स जी एक्सपोर्ट मां नतीजा न मिलण ते कावड़ जो इज़हार बि कयो।

0: केटीएन न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: बलोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: ये

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।
3: ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही ना जाएं, दर्द सहते।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क।
5: बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी, वधीक चार फौजी दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान में 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शबान बेन ऑपरेशन में मारिजी वियल दहशतगर्द जो अंग 109 थी वियो। सिक्योरिटी जरियन जो चवण है सरान टंगी वाले इलाके में ताजा कार्रवाई में जनम भीड़ो कल दहशतगर्द जो मजबूरी अंग 71 थी वियो। मारिजी वियल दहशतगर्द के कब्जे मां वरी अंग में हथियार बारूदी मवाद हथ किया।

अमरीकी फौजी जे ताज़न हमलन बाद वास्तारन इनकलाब अपनाई हरमुस बंद करे छो। ईरानी फौज बिना इजाजत के गुजरण से साइप्रस के पहरी जहाज के नाकारा बनाए छो। हथेमल में अमरीकी फौज जा ईरान के साहिली इलाके असलविया बो शहर से फजाई हमला। अमरीकी सेंटकॉम है साइप्रस के जहाज से ईरानी हमले सबब ईरान ते हमला कया व्या। ईरान ते हमलन जो टियों मरहलो मुकम्मल थी वो है। हमलन में 140 फौजी हंधन ते मजमू तौर 300 हंधन के निशानो बनाए वो है। ईरान जो अपना हरमुस से कंट्रोल न है। जहाजन की अचवन जारी है। अपना हरमुस कानूनी तौर घुसंदर समूरन जहाजन लाए खुलियल है। अमरीकी फौज अपना हरमुस में जहाजन की अचवन यकीनी पैण लाए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प है अपना हरमुस कमर्शियल ट्रैफिक लाए खुलियल है। ईरान ते अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी जवाबी कार्रवाई जारी। खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे ते हमला पाकिस्तान इनकलाब पारा उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया हुआ। बहरीन कतर की राजधानी में भी धमाकन जो आवाज बुधा वह। पाकिस्तान इनकलाब दावा कई तो ओमान के दक्कम बंदरगाह से अमरीकी लॉजिस्टिक तेल फ्राहम कदड़ मरकजन के निशानो बनाया है। यूएई के दिफा वारे वजीर है मुल्क जो दिफाई निजाम ईरान तरफा ईंदड़ मिसाइल ए ड्रोन से मुकाबलो कर रो है। ईरान ए अमरीका चिकताण घटाण सबर से मुजाहरो कन। नायब वजीर आजम साहब ईरानी परडेही वजीर अब्बास अराकची विच में फोन से राबतो। बिन्हीं अगवाणन पारा विच ओभर की सूरत हाल से गाल बोल। साकदार चौथे खत्े में अमन इस्तेकाम लाए सिफारतकारी पायद रस्तो है। बिन्हीं परडेही वजीरन पारा राबतन में रहने के इतफाक। ईरान के पैंजे फैसले की कीमत अदा करनी पवी। अमरीकी दिफा वाले वजीर पेट हेक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ईरान गलत फैसलो किया हाँ खेस कीमत अदा करनी पवी। अमरीकी दिफा वाले वजीर सेंटकॉम जो पैगाम भी शेयर कर। तो वायदो पूरो कयो या वायदे की भजपड़ी की कीमत अदा कयो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ एक तरफी वायदन जो दौर खत्म थी चुको है। पैंजा कल वायदा पूरा कयो या वायदन की भजपड़ी की कीमत अदा कयो। हकीकत अवाज सामू है।

त 79 ॾींहं गुज़रण बावजूद पुलिस गाॾी बाज़ियाब न कराए सघी आहे। सकंड में SUP अॻवाननि पारां फिरिया ऐं उजाला जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाजी कैम्प 3 ॾींहं बि जारी। अॻवाननि चयो त जवाबदार पासर हुजण सबबि पुलिस कार्रवाई नथी करे गाॾियूं बाज़ियाब करायूं वञनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: जब दिमाग ही नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की के खाते को मार दो हमें।
1: वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हामी को ढूंढना चाहता है। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर उधर
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: ये yeah!

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना, इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इज़हार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: आगे बर्बाद कर देगी।
1: तो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई। मामा
3: आशा आशा आशा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेस्ट एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: भारतीय बल दहशतगर्द जवान को 109 थी वो सिक्योरिटी सरिन चवण आए तसरान टंगी वाले इलाके में कार्रवाई में चार खारजी दहशतगर्द मारजी गया। ऑपरेशन शबान में जहनम भेड़ो कल दहशतगर्दन जो मजमू अंग 71 थी वो भारतीय बल दहशतगर्दन के कब्जे में वे अंग में हथियार ए बारूदी मवाद हथ कर। बलोचिस्तान जिले के माशकर में भारतीय हामी दहशतगर्दन जो बुसिलाना हमलो पंज बोरियत शहीद। सिक्योरिटी जरियन मूजिब बुसिल दहशतगर्दन मासूम ए हथे खाली बोरियतन के निशानो बनाया। शहीद बोरियतन में मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसन, मोहम्मद कदीर, मोहसिन ए बिलाल शामिल हैं। दहशतगर्दन के बुसिलाने हमले में शहीद समूरन बोरियतन जो वास्तो पंजाब से है। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके के कड़ो चाड़े सर्च ऑपरेशन शुरू कर छो। वजी अजम शहबाज शरीफ, करू वजीर मोहसिन नकवी ए वे वजीर नवाज अली शाह पारा दहशतगर्दी की मुजम्मत। शहीदन के वारिसन से ताजियत जो इज़हार।

0: அன்னைக்கு போச்சுச்சே தாசன் ஹம்லன் பாத வாஸ்தார நேரத்தலா அப்னாய் ஹர்மஸ் பங்கர் சடு ஈரானி போச்சுனாய் தாசன் சே குஜன்டே சைபர் சே பேரி ஜாஸ் கே நாய் மத்தியமல் மே அம்ரிக்கி போச்சா ஈரான் ஜே சாஹிலி இலாக்கே அஸ்லவியா ஐ போச்சே தே ஃபஜாய் ஹம்லா அம்ரிக்கி சன் காம் சே வாய் தா சைபர் சே ஜாஸ் தே ஈரானி ஹம்லே சபப் ईरान ते हमला कया विया आहिनि। ईरान ते हमलनि जो टियों मरहलो मुकमल थी वियो आहे। हमलनि में 140 फौजी हंधनि ते मजमूई तौर 300 हंधनि खे निशानो बणायो वियो आहे। ईरान जो अपना हरमुस ते कंट्रोल न आहे, तू जारी आहे। अपना हरमुस कानूनी तौर घुसंदड़ समूरनि जहाज़नि लाइ खुलियल आहे। अमरीकी अच वञ तयार आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अपना हरमुस कमर्शियल ट्रैफिक लाइ खुलियल आहे। ईरान ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जूं बि जवाबी कार्रवाइयूं जारी। ख़ते में मौजूद अमरीकी फौजी अॾनि ते हमला पाकिस्तान इंकलाब पारां उर्दन जे प्रिंस हसन एयरबेस में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करजी विया हुआ। बेरन ऐं तजावाज़ ॿुधा विया। इंकलाब दावा कई ते अमरीकी लॉजिस्टिक ऐं तेल फ्राहम कंदड़ मर्कज़नि खे निशानो बणायो आहे। यूएई जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त मुल्क जो दिफ़ाई निज़ाम ज़ाहिर ऐं ड्रोन सां मुक़ाबिलो करे रहियो आहे। ईरान ऐं अमरीका चिकताण घटाइण ऐं सबर जो मुज़ाहिरो कनि। नायब वज़ीर-ए-आज़म साख़्ताज़ी ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास अराग़ची विच में फोन ते राब्तो। ॿिन्ही अॻवाननि पारां विच ओभर जी सूरतयाल ते ॻाल्हि ॿोल। साख़्ताज़ी चयो त ख़ते में अमन इस्तेहकाम लाइ सिफ़ारतकारी वाहिद रस्तो आहे। ॿिन्ही परडे॒ही वज़ीरनि पारां राब्तनि में रहण जे ते इतफ़ाक़।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।